Vaygırıcı ka kalsa, vaygırıcı ki fete. Har çuk çuk bagdu paya, petrak tayram raje. Har nakas juş har maria, prelat raya. Ahankariya nind kapit de nam de omkalaya. Jananani ke esahara sevya antle shadaya. Shlok mahala pehla. Duk daru sukarag behiya ja sukatam na hoy. तू करता कर्ण में नाही जाहो करिना होए बलिहारी खुद तवसिया तेरा अंतन चाहे लख्य रहा हूँ जात मैं जोत जोत मैं जाता अकल कला भरपुर रहिया तू सच्चा साहेब सिफर सुवालियो जिन की सो पार पैया कहूँ न करते क्या बाता जो कुछ करना सो कर रहिया सो दारा गा सा मला पहला एक ओंकार साथ गुरु प्रसाद सो दर तेरा के हा सो गर के हा चिरबे सर्ब समाले वाजे तेरी नार ने कसंका केते तेरी वावन हारे केते तेरी राग परी से कहिया केते तेरी गावन हारे गावन तुरनो पवन पानी बसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुरनो चिरकुप लिख जान लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुरनो ईश्वर ब्रह्मा रे वि सोहा तेरे सदा सवारे गावन तुरनो इन इंद्रासन बेती देवते आदर नाले गावन तुरनो सित समारी अंदर गावन तुरनो सा बिचारे गावन तुरनो जाति साति संतो की गावन तुरनो वीर करारे गावन तुरनो पंड परन रखी सिर जुग जुग वेदा नाले गावन तुरनो मोहनिया मन मोहन सरगा माच प्याले गावन तुरनो रतन उपाय ठेरी आत सत तीर्थ नाले गावन तुरनो जोड महाबासुरा गावन तुरनो कानी चारे गावन तुरनो खंड मंदल ब्रह्मंद कर कर रखे तेरी दारी सैतुन गावन जोथर पावन रत्ते तेरी भगत विसाले होर केते तू नो गावन से में चितना आवे नानकिया बिचारे सोए सोए सदा सच साहेब साचा साची नाही हाबी होसी जाइना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी बाती कर कर जिनसी माया जिन उपाय खार खार देखे कीत अपना ज्योतिष्टी वधी आई ज्योत से बावी सोई खर सी फिर हुक्म ना कर ना जाई सोहो पत शाहो साहपत साहेब नानक रहन रसाए एक्सक्यूज मी आसा महला पहला सुन वड्डा आके सब कोय केवर वड्डा दीता होए कीमत पाए ना कहिया जाए कहने वाले तेरी रहे समाए वदे मेरे साहेब गहिर गंभीर गुनी कहिरा कोई ना जाने तेरा केता केवर चिर रहा सब सूरती मिल सूरत कमाए सब कीमत मिल कीमत पाए ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाए कहना जाए तेरी तिल वधियाए सब सत सब तप सब चंग्याया सिद्धा पुरका क्या वधियाया थूर विन सिरिकन ना पाहिया कर्मल ना ही ताक रहाया आखन वाला क्या वेचारा सिफ दिबरे तेरे बंदारा जेस तू दे से क्या चार नानक सच सवार नहारा असमल पहला आका जीवा विसर मर चाओ आकन ओका सचा नाओ साचे नाम की लागे भूख ऊठ भूखे खही चलिए रूख सो क्यों विसरे मेरी माए सच्चा साहिब सच्चे नाए रहा साचे नाम की ठिल वदियाए आक तक कीमत नहीं पाए जे सब मिलके आकन पाए वदना होवे गतना जाए

तरसपै होई तरसपया मेरा मत होए सतगुर सजन मिलियाहा नानक नाम ले ता जीवा तन मन तीवे हरिया पोरी तिते तू समरता जिते कोई नाहे।